0: बदनाम करने के लिए आपने उन पे इल्जाम लगाया कि उन्होंने जबरदस्ती आपके
1: आपके खानदान
2: हजू अली वॉज